अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करनं सत गुर गुर सेव अलख।

0: वाह वाह का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चांद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया घट घट पासा, आपे नर आपे फुन्नारी, आपे सार आप ही पासा, गोरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने है, शिव बिरंच धर ध्यान नित है जस वेद बखाने, निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस, श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसै, गुरु समरथ गह करिया त्रो बुद्ध समत समारन को, पुन त्रम तुझा फैरंत सदा अग पुंजत रंग निवारन को, मथुरा जन जान कही जी साच सोर कसूना बिचारन को, हर नाम बोहेथ बडो कल में पव सागर पार उतारन को।
2: जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन, जेह सतगुर सिमरंत जिदे हर नाम दिनो दिन, जेह सतगुर सिमरंत जिया की तपट मिटावै, जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै, सोई रामदास गुरु बलपन मिद संगत तन तन करो, जे सतगुर रग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो, जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास, ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दर।